ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 19 अगस्त बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला जैन और वरुण तोमर से सुने समाचार। दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि अमेरिका के साथ जारी वार्षिक संयुक्त सैन्याभ्यास को वॉशिंगटन के अनुरोध पर अवधि कम करते हुए शुक्रवार को समाप्त कर दिया जाएगा। उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास सोमवार से शुरू होकर 27 अगस्त तक चलने वाला था। दक्षिण कोरियाई जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बुधवार को घोषणा की कि अब इसकी अवधि लगभग आधी कर दी जाएगी। यह अभ्यास कोरियाई प्रायद्वीप पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के लिए आयोजित किए जाते हैं। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने यह भी कहा कि जमीनी अभ्यासों में कुछ कटौती की जाएगी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। यह घोषणा अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रविवार को पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों को काफी हद तक कम करने का आदेश देने के बाद आई है। ट्रंप ने कहा कि ये अभ्यास उत्तर कोरिया को पूरी तरह से अनुचित और शत्रुतापूर्ण संकेत भेजते हैं। दक्षिण कोरियाई मीडिया का कहना है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ जवाबी हमले की स्थितियों पर आधारित प्रशिक्षण रद्द कर दिया जाएगा। उत्तर कोरिया इस तरह के प्रशिक्षण की कड़ी निंदा करता आया है। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी का कहना है कि पहले से शुरू हो चुके सैन्य अभ्यास का समय से पहले समाप्त होना या उसमें कटौती होना अभूतपूर्व है। दक्षिण कोरिया के पर्यवेक्षकों ने आशंका जताई है कि इस नवीनतम कदम से अमेरिका और दक्षिण कोरिया द्वारा स्थापित प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर हो सकती है। अमरीकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगियों पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ इस शरद ऋतु में ही बैठक कराने का दबाव डाल रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मंगलवार को अमरीकी सरकारी अधिकारियों के हवाले से यह खबर प्रकाशित की। रविवार को राष्ट्रपति के सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट के बाद यह बात सामने आई है। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास के पैमाने को घटाने का आदेश दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान की गई कूटनीति को पुनर्जीवित करना है, जब उन्होंने किम को उत्तर कोरिया का परमाणु हथियार कार्यक्रम छोड़ने के लिए मनाने का प्रयास किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बैठक नवंबर में ट्रंप की अगली एशिया यात्रा के दौरान हो सकती है, जब विश्व नेता चीन के शेंजन में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई योजना नहीं बनाई जा रही है, लेकिन किम के साथ एक और महत्वपूर्ण बैठक की राष्ट्रपति की इच्छा से पता चलता है कि ईरान पर जीत अब भी दूर है। ऐसे में ट्रंप विदेश नीति में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए उत्सुक है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2018 से 2019 तक किम से 3 बार मुलाकात की थी, लेकिन दोनों पक्ष उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर मतभेदों को दूर करने में विफल रहे। तब से उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम में काफी विकास हो चुका है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। टोक्यो के पूर्व में स्थित चिबा प्रीफेक्चर के अधिकारियों का कहना है कि पिछले सप्ताह हुई रिकॉर्ड तोड़ भारी वर्षा के बाद 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और एक व्यक्ति अब भी लापता है। अधिकारियों का कहना है कि 130 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 3 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। उनका कहना है कि 1206 मकानों के फर्श डूब गए हैं और 1489 मकानों की नींव में पानी भर गया है। अधिकारियों का कहना है कि बुधवार दोपहर 1 बजे तक

0: जापानी न्यायाधीश हैं जिन्होंने 2024 में पदभार संभाला था। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को विदेश मंत्री मार्को रूबियो का वक्तव्य जारी किया, जिसमें आईसीसी को भ्रष्ट और राजनीति से बुरी तरह प्रभावित बताया गया। साथ ही अदालत पर अधिकार के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। प्रतिबंधों के तहत अमरीका में स्थित आईसीसी की परिसंपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि वो तब तक कार्रवाई जारी रखेगा जब तक कि आईसीसी अमरीकी संप्रभुता के लिए खतरा बना रहेगा। अमरीकी अधिकारियों ने अफगानिस्तान में अमरीकी सैनिकों द्वारा कथित युद्ध अपराधों की जांच को अदालत द्वारा मंजूरी दिए जाने पर आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने युद्ध अपराधों के कथित आरोप के तहत इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की निंदा की है। उन्होंने इन मामलों में शामिल न्यायाधीशों और अभियोक्ताओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। आईसीसी ने प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए कहा है कि अदालत को निशाना बनाने से कानून का शासन कमजोर होगा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। उसने जोर देकर कहा कि वो स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखेगा। जापान सरकार ने मंगलवार को एक विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक आयोजित की, जिसमें विदेशी निवासियों को जापानी भाषा और दैनिक जीवन के नियम सिखाने में मदद करने के लिए एक नए कार्यक्रम पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसा माहौल तैयार करना है जिससे विदेशी निवासी जापानी समाज में आसानी से घुल मिल सकें। विदेशियों से संबंधित नीति के प्रभारी कैबिनेट कार्यालय के राज्य मंत्री सुजुकी हायातो ने कहा कि एक व्यवस्थित और समावेशी समाज की स्थापना के दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम की स्थापना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि उनका लक्ष्य एक प्रभावी योजना तैयार करने का है। ये योजना मुख्य रूप से मध्यम से दीर्घकालिक निवासियों पर लागू होगी। ऑनलाइन शिक्षण सुविधा जापान के बाहर भी उपलब्ध होगी। इस बैठक में कार्यक्रम की विषय वस्तु और लक्षित प्रतिभागियों के साथ साथ निवास दर्जे की जांच में परिणामों को कैसे शामिल किया जाए जैसे विषयों पर चर्चा हुई। समिति ने पुष्टि की कि वो वित्त वर्ष 2028 में कार्यक्रम शुरू करने के उद्देश्य से चर्चा जारी रखेगी।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो के पूर्व में स्थित चिबा प्रीफेक्चर में पिछले सप्ताह हुई रिकॉर्ड तोड़ भारी वर्षा के बाद 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और एक व्यक्ति अब भी लापता है। साथ ही 130 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 3 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। और इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 25वें पाठ में अपनी तबीयत के बारे में बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो बैठक में आराम कर रही है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है।
0: तो आइए सुनते हैं 25वें पाठ की बातचीत।
2: तामसान, काओइरो गा वारुई देसु यो। दोशितान देसु का?
3: नोदो गा इताई इन देसु।
2: ओया ओया, सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
3: काइटो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
4: तामसान, देकिता यो। हाई, दोज़ो।
3: ओ दाइजी नी।
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: हारूजी में लगे सेंसर ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है और उनके गालों पर हल्की नीली रोशनी टिमटिमाने लगी। तो हारूजी ने ताम से पूछा,
2: तामसान, काओइरो गा वारुई देसु यो।
1: ताम जी, चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है।
2: दोशितान देसु का?

0: क्या हुआ?
1: ताम ने खांसते हुए जवाब दिया,
2: नोदो गा इताई देस,
0: गले में दर्द है।
1: तब हारूजी ने कहा,
3: ओया ओया।
0: ओ,
1: फिर हारूजी ने ताम को सलाह दी,
3: सोन्ना तोकी निवा शोगा हचिमित्सुयु गा ई देसु यो।
0: ऐसे समय में अदरक और शहद वाला गर्म पानी अच्छा रहता है।
1: उसके बाद मिया ने कहा,
2: काइतो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु,
0: काइतो अभी बना रहा है।
1: फिर काइतो ताम के लिए अदरक और शहद वाला गर्म पानी लेकर आया।
4: ताम-सान, देखता है ओ।
1: ताम बन गया।
4: हाय, दोज़ो।
1: ये लो।
0: उसके बाद मिया ने ताम से कहा,
2: ओदाइजिनी,
0: अपना ध्यान रखो।
1: अदरक और शहद वाला गर्म पानी बनाने के लिए कद्दूकस किए हुए अदरक को शहद के साथ गर्म पानी में मिलाया जाता है। ये माना जाता है कि इसे पीने से गले के दर्द और खांसी से राहत मिलती है। इसे पीकर ताम को अच्छा लगेगा।
0: आज का मुख्य वाक्य है
2: नोदो गा इताई देस,
0: यानी गले में दर्द है। ये वाक्य सीखकर आप तबीयत खराब होने पर अपनी परेशानी बता सकेंगे।
1: इस वाक्य में
5: नोदो
1: का अर्थ है गला। उसके बाद लगा है गा, जो उस अंग के नाम के बाद लगाया जाता है जिसमें दर्द हो, और
5: इताइन देस
1: का मतलब होता है दर्द है।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: इताइन देस
0: के अंत में लगे
5: देस
0: का उपयोग अपनी बात समझाते समय किया जाता है। इसलिए किसी को अपनी तबीयत के बारे में बताते समय भी वाक्य के अंत में लगाते हैं
5: देस। इताई देस
1: में पहले आया है ई विशेषण,
5: इताई
1: यानी दर्द होना, और उसके बाद लगा है
5: देस।
1: आज की बातचीत में ताम इस वाक्य की मदद से हारूजी को अपनी परेशानी समझा रही है।
0: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: इताई देस, नोदो गा इताई देस।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें कोई अपनी तबीयत के बारे में बता रहा है।
2: दोस्तान देस का?
4: अतामा गा इताई देस, नेत्स गा आरुं देस।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले महिला ने कहा,
2: दोस्तान देस का?
0: क्या हुआ?
1: कोई परेशान दिख रहा हो तो उसकी समस्या पूछने के लिए इस वाक्य का उपयोग करते हैं। ये पूरा वाक्य एक साथ याद कर लीजिए।
0: जवाब में पुरुष ने कहा,
4: अतामा गा इताई देस,
1: सिर में दर्द है।
5: अतामा
0: का मतलब है सिर, इसलिए
5: अतामा गा इताई
0: का मतलब हुआ सिर में दर्द है। पुरुष ने आगे कहा,
4: नेत्स गा आरुं देस,
1: बुखार है।
5: नेत्स
0: का अर्थ है बुखार, और
5: आरु
0: एक क्रिया है जिसका अर्थ है होना। तो
5: नेत्सु गा आरु
0: का मतलब है बुखार होना। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि
5: देस
0: विशेषणों के ही नहीं क्रियाओं के बाद भी लग सकता है।
1: तो अब ये बातचीत सुन लीजिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
5: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, तो ये बात जापानी भाषा में कैसे कहेंगे? पेट के लिए जापानी शब्द है
5: ओनाका,
0: और दर्द को जापानी भाषा में कहते हैं
5: इताई।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: ओनाका गा इताई देस, ओनाका गा इताई देस।
1: अब मान लीजिए कि बहुत देर तक किसी वाहन में बैठे बैठे आपको आपकी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत खराब लगना को जापानी में कहते हैं
5: किमोची गा वारुई।
1: तो अपनी बात जापानी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए।
4: किमोची गा वारुई देस,

0: 気持ちが悪いんです。
1: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की जो मिया की पंक्ति है आप भी याद कर लीजिए
2: ओदाइजिनी
3: ओदाइजिनी
4: का अर्थ है अपना ध्यान रखो अगर कोई बीमार हो या किसी को कोई चोट लगी हो तो आप फिक्र दिखाने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं इससे आप ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आराम करके जल्दी ठीक हो जाए
1: अब इस वाक्य को विभिन्न लोगों की आवाजों में सुनते हैं
5: お大事に。
3: お大事に。
6: お大事に。
4: और अब एक बार फिर से सुन लेते हैं आज की बातचीत。
7: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
2: 喉が痛いんです。
7: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
2: カイトが今作っています。
6: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
2: お大事に。
7: ハルさんの知恵袋。
1: अब बारी है हमारे अंश हारू जी की सलाह की, जिसमें आज हम बता रहे हैं कि अगर आप जापान में बीमार हो जाएं तो क्या कर सकते हैं।
4: जापान में बीमार होने पर क्या करना चाहिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी के लक्षण क्या हैं।
1: अगर लक्षण गंभीर न हो तो आप किसी भी दवा खाने या फार्मेसी से दवाई ले सकते हैं वहाँ दुकानदार को अपनी परेशानी बताने पर वो आपको सही दवाई दे देगा तो दवा खाने जाइए और दुकानदार से कहिए पेट में दर्द है या बुखार है ऐसा करने पर आपको बिना पर्ची के दी जा सकने वाली दवा मिल जाएगी
4: लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको किसी चिकित्सालय या अस्पताल जाना होगा विदेशी पर्यटकों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूची जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन यानी JNTO की वेबसाइट पर देखी जा सकती है वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आप फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO शब्द से सर्च कर सकते हैं इसे बुकमार्क कर लीजिएगा
1: इसके अलावा पास के अस्पताल या चिकित्सालय का पता लगाने के लिए आप पर्यटन केंद्र या होटल के रिसेप्शन पर भी पूछ सकते हैं और आपात स्थिति में फोन पर 119 दबाकर एम्बुलेंस बुला सकते हैं
4: लेकिन हम ये कामना करते हैं कि जापान में यात्रा करते समय आपको कभी भी इन सुविधाओं की जरूरत ना पड़े
1: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा
4: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ साकुरा यानी चेरी के फूल देखने जाएंगी तब तक के लिए सायोनारा

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 19 अगस्त बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला जैन और वरुण तोमर से सुने समाचार। दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि अमेरिका के साथ जारी वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास को वॉशिंगटन के अनुरोध पर अवधि कम करते हुए शुक्रवार को समाप्त कर दिया जाएगा। उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास सोमवार

से शुरू होकर 27 अगस्त तक चलने वाला था। दक्षिण कोरियाई जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बुधवार को घोषणा की कि अब इसकी अवधि लगभग आधी कर दी जाएगी। यह अभ्यास कोरियाई प्रायद्वीप पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के लिए आयोजित किए जाते हैं। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने यह भी कहा कि जमीनी अभ्यासों में कुछ कटौती की जाएगी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। यह घोषणा अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रविवार को पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों को काफी हद तक कम करने का आदेश देने के बाद आई है। ट्रंप ने कहा कि ये अभ्यास उत्तर कोरिया को पूरी तरह से अनुचित और शत्रुतापूर्ण संकेत भेजते हैं। दक्षिण कोरियाई मीडिया का कहना है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ जवाबी हमले की स्थितियों पर आधारित प्रशिक्षण रद्द कर दिया जाएगा। उत्तर कोरिया इस तरह के प्रशिक्षण की कड़ी निंदा करता आया है। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी का कहना है कि पहले से शुरू हो चुके सैन्य अभ्यास का समय से पहले समाप्त होना या उसमें कटौती होना अभूतपूर्व है। दक्षिण कोरिया के पर्यवेक्षकों ने आशंका जताई है कि इस नवीनतम कदम से अमेरिका और दक्षिण कोरिया द्वारा स्थापित प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर हो सकती है। अमरीकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगियों पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ इस शरद ऋतु में ही बैठक कराने का दबाव डाल रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मंगलवार को अमरीकी सरकारी अधिकारियों के हवाले से यह खबर प्रकाशित की। रविवार को राष्ट्रपति के सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट के बाद यह बात सामने आई है। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास के पैमाने को घटाने का आदेश दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान की गई कूटनीति को पुनर्जीवित करना है, जब उन्होंने किम को उत्तर कोरिया का परमाणु हथियार कार्यक्रम छोड़ने के लिए मनाने का प्रयास किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बैठक नवंबर में ट्रंप की अगली एशिया यात्रा के दौरान हो सकती है, जब विश्व नेता चीन के शेंजन में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई योजना नहीं बनाई जा रही है, लेकिन किम के साथ एक और महत्वपूर्ण बैठक की राष्ट्रपति की इच्छा से पता चलता है कि ईरान पर जीत अब भी दूर है। ऐसे में ट्रंप विदेश नीति में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए उत्सुक है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2018 से 2019 तक किम से 3 बार मुलाकात की थी, लेकिन दोनों पक्ष उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर मतभेदों को दूर करने में विफल रहे। तब से उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम में काफी विकास हो चुका है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। टोक्यो के पूर्व में स्थित चिबा प्रीफेक्चर के अधिकारियों का कहना है कि पिछले सप्ताह हुई रिकॉर्ड तोड़ भारी वर्षा के बाद 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और एक व्यक्ति अब भी लापता है। अधिकारियों का कहना है कि 130 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 3 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। उनका कहना है कि 1206 मकानों के फर्श डूब गए हैं और 1489 मकानों की नींव में पानी भर गया है। अधिकारियों का कहना है कि बुधवार दोपहर 1 बजे तक नगरपालिकाओं द्वारा निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में 59 लोग रह रहे थे। शहर में बाढ़ के कारण सड़कों पर खराब हुए लगभग 2500 वाहनों को हटाने का काम चल रहा है। मंगलवार को इन वाहनों से निपटने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया। इसमें प्रीफेक्चर, चिबा शहर और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ साथ क्रेन से वाहन उठाने वाले लोग भी शामिल हैं। कार्यदल वाहनों के मालिकों की पहचान करके उनसे वाहन हटवाने का अनुरोध करेगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के खिलाफ अपना अभियान तेज कर रहा है। वो न्यायालय के नेतृत्व पर प्रतिबंध लगा रहा है, जिसमें अध्यक्षा अकाने तोमो को भी शामिल हैं। अकाने एक

0: अपराधों के कथित आरोप के तहत इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की निंदा की है। उन्होंने इन मामलों में शामिल न्यायाधीशों और अभियोक्ताओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। आईसीसी ने प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए कहा है कि अदालत को निशाना बनाने से कानून का शासन कमजोर होगा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। उसने जोर देकर कहा कि वो स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखेगा। जापान सरकार ने मंगलवार को एक विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक आयोजित की, जिसमें विदेशी निवासियों को जापानी भाषा और दैनिक जीवन के नियम सिखाने में मदद करने के लिए एक नए कार्यक्रम पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसा माहौल तैयार करना है जिससे विदेशी निवासी जापानी समाज में आसानी से घुल मिल सकें। विदेशियों से संबंधित नीति के प्रभारी कैबिनेट कार्यालय के राज्य मंत्री सुजुकी हायातो ने कहा कि एक व्यवस्थित और समावेशी समाज की स्थापना के दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम की स्थापना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि उनका लक्ष्य एक प्रभावी योजना तैयार करने का है। ये योजना मुख्य रूप से मध्यम से दीर्घकालिक निवासियों पर लागू होगी। ऑनलाइन शिक्षण सुविधा जापान के बाहर भी उपलब्ध होगी। इस बैठक में कार्यक्रम की विषय वस्तु और लक्षित प्रतिभागियों के साथ साथ निवास दर्जे की जांच में परिणामों को कैसे शामिल किया जाए जैसे विषयों पर चर्चा हुई। समिति ने पुष्टि की कि वो वित्त वर्ष 2028 में कार्यक्रम शुरू करने के उद्देश्य से चर्चा जारी रखेगी।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो के पूर्व में स्थित चिबा प्रीफेक्चर में पिछले सप्ताह हुई रिकॉर्ड तोड़ भारी वर्षा के बाद 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और एक व्यक्ति अब भी लापता है। साथ ही 130 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 3 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। और इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: NHK World जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 25वें पाठ में अपनी तबीयत के बारे में बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो बैठक में आराम कर रही है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है।
0: तो आइए सुनते हैं 25वें पाठ की बातचीत।
2: तामेसान, काओइरो गा वारुई देसु यो। दोउ शितान देसु का?
3: नोदो गा इताई देसु।
2: ओया ओया, सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
3: काइटो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
4: तामेसान, देकिता यो। हाई, दोउज़ो।
3: ओ दाइजी नी।
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: हारूजी में लगे सेंसर ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है और उनके गालों पर हल्की नीली रोशनी टिमटिमाने लगी। तो हारूजी ने ताम से पूछा,
2: तामेसान, काओइरो गा वारुई देसु यो।
1: ताम जी, चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है।
2: दोउशितान देसु का?
1: क्या हुआ?
0: ताम ने खांसते हुए जवाब दिया,
3: नोदो गा इताई देसु,
1: गले में दर्द है।
0: तब हारूजी ने कहा,
2: ओया ओया।
1: ओ,
0: फिर हारूजी ने ताम को सलाह दी,
2: सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
1: ऐसे समय में अदरक और शहद वाला गर्म पानी अच्छा रहता है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
3: काइटो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
1: काइटो अभी बना रहा है।
0: फिर काइटो ताम के लिए अदरक और शहद वाला गर्म पानी लेकर आया।
4: तामसान, देखता यो।
0: ताम बन गया।
4: हाई, दोज़ो।
0: ये लो।
1: उसके बाद मिया ने ताम से कहा,
3: ओ दाइजी नी,
1: अपना ध्यान रखो।
0: अदरक और शहद वाला गर्म पानी बनाने के लिए

0: ये कद्दूकस किए हुए अदरक को शहद के साथ गर्म पानी में मिलाया जाता है। ये माना जाता है कि इसे पीने से गले के दर्द और खांसी से राहत मिलती है। इसे पीकर ताम को अच्छा लगेगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है
2: नोदो गा इताई देस,
1: यानी गले में दर्द है। ये वाक्य सीखकर आप तबीयत खराब होने पर अपनी परेशानी बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: नोदो
0: का अर्थ है गला। उसके बाद लगा है गा, जो उस अंग के नाम के बाद लगाया जाता है जिसमें दर्द हो, और
3: इताई देस
0: का मतलब होता है दर्द है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
3: इताई देस
1: के अंत में लगे
3: देस
1: का उपयोग अपनी बात समझाते समय किया जाता है। इसलिए किसी को अपनी तबीयत के बारे में बताते समय भी वाक्य के अंत में लगाते हैं
3: देस। इताई देस
0: में पहले आया है ई विशेषण
3: इताई,
0: यानी दर्द होना, और उसके बाद लगा है
3: देस।
0: आज की बातचीत में ताम इस वाक्य की मदद से हारूजी को अपनी परेशानी समझा रही है।
1: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
3: इताई देस, नोदो गा इताई देस।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें कोई अपनी तबीयत के बारे में बता रहा है।
4: दोस्तान देस का?
5: अतामा गा इताई देस, नेत्स गा आरुं देस।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
0: पहले महिला ने कहा
4: दोस्तान देस का,
1: क्या हुआ?
0: कोई परेशान दिख रहा हो तो उसकी समस्या पूछने के लिए इस वाक्य का उपयोग करते हैं। ये पूरा वाक्य एक साथ याद कर लीजिए।
1: जवाब में पुरुष ने कहा
5: अतामा गा इताई देस,
0: सिर में दर्द है।
3: अतामा
1: का मतलब है सिर, इसलिए
3: अतामा गा इताई
1: का मतलब हुआ सिर में दर्द है। पुरुष ने आगे कहा
5: नेत्स गा आरुं देस,
0: बुखार है।
3: नेत्स
1: का अर्थ है बुखार, और
3: आरु
1: एक क्रिया है जिसका अर्थ है होना। तो
3: नेत्स गा आरु
1: का मतलब है बुखार होना। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि
3: देस
1: विशेषणों के ही नहीं क्रियाओं के बाद भी लग सकता है।
0: तो अब ये बातचीत सुन लीजिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
3: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, तो ये बात जापानी भाषा में कैसे कहेंगे? पेट के लिए जापानी शब्द है
3: ओनाका,
1: और दर्द को जापानी भाषा में कहते हैं
3: इताई।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: ओनाका गा इताई देस, ओनाका गा इताई देस।
0: अब मान लीजिए कि बहुत देर तक किसी वाहन में बैठे बैठे आपको आपकी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत खराब लगना को जापानी में कहते हैं
3: किमोची गा वारुई।
0: तो अपनी बात जापानी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए।
5: किमोची गा वारुई देस, किमोची गा वारुई देस।
1: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: ओदाइजिनी,
3: ओदाइजिनी
0: का अर्थ है अपना ध्यान रखो। अगर कोई बीमार हो या किसी को कोई चोट लगी हो तो आप फिक्र दिखाने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आराम करके जल्दी ठीक हो जाए।
1: अब इस वाक्य को विभिन्न लोगों की आवाजों में सुनते हैं।
6: ओदाइजिनी,
7: ओदाइजिनी,
8: ओदाइजिनी।
0: और अब एक बार फिर से सुन लेते हैं आज की बातचीत।
9: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
2: 喉が痛いんです。
9: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
2: カイトが今作っています。
10: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
2: お大事に。
9: ハルさんの知恵袋。
1: अब बारी है हमारे अंश हारू जी की सलाह की, जिसमें आज हम बता रहे हैं कि अगर आप जापान में बीमार हो जाएं तो क्या कर सकते हैं।
0: जापान में बीमार होने पर क्या करना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी के लक्षण क्या हैं।
1: अगर लक्षण गंभीर ना हो तो आप किसी भी दवा खाने या फार्मेसी से दवाई ले सकते हैं। वहाँ दुकानदार को अपनी परेशानी बताने पर वो आपको सही दवाई दे देगा। तो दवा खाने जाइए और दुकानदार से कहिए पेट में दर्द है या बुखार है। ऐसा करने पर आपको बिना पर्ची के दी जा सकने वाली दवा मिल जाएगी।
0: लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको किसी चिकित्सालय या अस्पताल जाना होगा। विदेशी पर्यटकों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूची जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन यानी JNTO की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आप फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO शब्द से सर्च कर सकते हैं। इसे बुकमार्क कर लीजिएगा।
1: इसके अलावा पास के अस्पताल या चिकित्सालय का पता लगाने के लिए आप पर्यटन केंद्र या होटल के रिसेप्शन पर भी पूछ सकते हैं, और आपात स्थिति में फोन पर 119 दबाकर एम्बुलेंस बुला सकते हैं।
0: लेकिन हम ये कामना करते हैं कि जापान में यात्रा करते समय आपको कभी भी इन सुविधाओं की जरूरत ना पड़े।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ साकुरा यानी चेरी के फूल देखने जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। टोक्यो के मशरक में वाके चिबा प्रिफेक्चर में हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते रिकॉर्ड शदीद बारिश के बाद 13 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। उनका कहना है कि एक शख्स लापता है। हुकाम के मुताबिक 130 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 3 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। उनका कहना है कि ज़ेरे आब आने वाले घरों में से 1489 घरों में पानी फर्श की सतह से नीचे रहा, जबकि 1206 में फर्श की सतह से ऊपर आ गया। हुक्काम का कहना है कि बुध की दोपहर 1 बजे तक 59 अफराद बल्दियात की जानिब से नामजद करदा इनखलाई मराकज में मुकीम थे। ज़ेरे आब आने के बाद शहर की सड़कों पर छोड़ी गई तकरीबन 2500 गाड़ियों को मुंतकिल करने का काम जारी है। छोड़ी गई गाड़ियों से निपटने के लिए मंगल को एक प्रोजेक्ट टीम तश्कील दी गई। इसमें प्रिफेक्चर, चिबा शहर और मरकजी हुकूमत के साथ साथ गाड़ियां खींचने वाले ट्रकों की सनत के नुमाइंदे भी शामिल हैं। ये टीम गाड़ियों के मालिकान की शनाख्त करेगी और इन्हें ले जाने की दरख्वास्त करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया बैनुल अक्वामी फौजदारी अदालत ICC के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज कर रही है। इसकी जानिब से सदर मोहतरमा अकाने तोमोको समेत अदालत की क़यादत पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। अकाने एक जापानी जज हैं जिन्होंने 2024 में ओहदा संभाला था। अमरीकी वजारत खारजा ने मंगल के रोज़ वजीर खारजा मार्को रूबियो का एक बयान जारी किया। इसमें ICC को बदउनवान और तबाहकुन हद तक सियासत ज़दा करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया गया है कि अदालत अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। इन पाबंदियों में अमरीका में मौजूद किसी भी असासे को मुंजमित करने पर जोर दिया गया है। वजारत खारजा ने यह भी कहा कि वो उस वक्त तक मजीद कार्रवाई करने के लिए तैयार है जब तक कि ICC अमरीकी खुद मुख्तारी को मजीद खतरे में ना डाल सके। अमरीकी हुकाम ने अदालत की जानिब से अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों के मुबैना जंगी जराइम की तहकीकात की मंजूरी पर एतराज़ किया है। उन्होंने मुबैना जंगी जराइम पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जारी किए गए वारंट गिरफ्तारी की मजम्मत भी की है। हुकाम ने इन मुकदमात में मुलव्वस जजों और इस्तगासा पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। ICC की जानिब से पाबंदियों पर तनकीद की गई है। इसने कहा है कि अदालत को निशाना बनाने से कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचेगा और बैनुल अक्वामी कानूनी नज़्म खतरे में पड़ जाएगा। अदालत का इसरार है कि वो आज़ादाना तौर पर काम करती रहेगी।

0: अ कॉर्नर, आज हम आपको बता रहे हैं कि जापान में बीमार हो जाएं तो क्या करना चाहिए।
1: हिरा, आपकी तबीयत खराब हो तो आप क्या करती हैं?
0: इसका ताल्लुक बीमारी से है। मामूली मसले की सूरत में मेडिकल स्टोर से दवा ले लेती हूँ।
1: वाकई बीमारी के अलामात मामूली हों तो मेडिकल स्टोर से दवा लेना आसान है। स्टोर के माहिर अद्वियात को पेट में दर्द या बुखार वगैरह बीमारी की अलामात बताकर डॉक्टर नुस्खे के बगैर दवा ली जा सकती है।
0: लेकिन अगर डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो तो क्या किया जाए?
1: ऐसी सूरत में मुतल्लिका शोबे, मसलन जनरल फिजिशियन या आँख या कान वगैरह के शोबे के हामिल क्लिनिक या अस्पताल जाना चाहिए। मुआयने के बाद डॉक्टर दवाएं तजवीज करेगा। डॉक्टरी नुस्खा दिखाकर मेडिकल स्टोर से दवा लें। हुकूमत जापान के शोबे सियाहत JNTO की वेबसाइट पर उन तिब्बी इदारों की फहरिस्त मौजूद है जहाँ गैर मुल्की सयाहों के मुआयने की सहूलत मौजूद है। साइट तलाश करने के लिए फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO से सर्च करें। इस वेबसाइट को महफूज कर लेना बेहतर होगा। इसके अलावा सियाहती मराकज़ या होटल के इस्तकबालिया काउंटर से भी करीबी हस्पताल के बारे में मालूमात ली जा सकती हैं और किसी हंगामी सूरत हाल में 119 पर फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई जा सकती है।
0: 119, मैं ये नंबर याद रखूंगी।
1: खुदा करे कि कभी ये नंबर इस्तेमाल करने की नौबत ना आए, लेकिन बहरहाल इसे याद रखना मुफीद होगा।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 19 अगस्त बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला जैन और वरुण तोमर से सुने समाचार। दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि अमेरिका के साथ जारी वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास को वॉशिंगटन के अनुरोध पर अवधि कम करते हुए शुक्रवार को समाप्त कर दिया जाएगा। उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास सोमवार से शुरू होकर 27 अगस्त तक चलने वाला था। दक्षिण कोरियाई जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बुधवार को घोषणा की कि अब इसकी अवधि लगभग आधी कर दी जाएगी। यह अभ्यास कोरियाई प्रायद्वीप पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के लिए आयोजित किए जाते हैं। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने यह भी कहा कि जमीनी अभ्यासों में कुछ कटौती की जाएगी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। यह घोषणा अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रविवार को पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों को काफी हद तक कम करने का आदेश देने के बाद आई है। ट्रंप ने कहा कि ये अभ्यास उत्तर कोरिया को पूरी तरह से अनुचित और शत्रुतापूर्ण संकेत भेजते हैं। दक्षिण कोरियाई मीडिया का कहना है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ जवाबी हमले की स्थितियों पर आधारित प्रशिक्षण रद्द कर दिया जाएगा। उत्तर कोरिया इस तरह के प्रशिक्षण की कड़ी निंदा करता आया है। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी का कहना है कि पहले से शुरू हो चुके सैन्य अभ्यास का समय से पहले समाप्त होना या उसमें कटौती होना अभूतपूर्व है। दक्षिण कोरिया के पर्यवेक्षकों ने आशंका जताई है कि इस नवीनतम कदम से अमेरिका और दक्षिण कोरिया द्वारा स्थापित प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर हो सकती है। अमरीकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगियों पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ इस शरद ऋतु में ही बैठक कराने का दबाव डाल रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मंगलवार को अमरीकी सरकारी अधिकारियों के हवाले से यह खबर प्रकाशित की। रविवार को राष्ट्रपति के सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट के बाद यह बात सामने आई है। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास के पैमाने को घटाने का आदेश दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान की गई कूटनीति को पुनर्जीवित करना

है जब उन्होंने किम को उत्तर कोरिया का परमाणु हथियार कार्यक्रम छोड़ने के लिए मनाने का प्रयास किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बैठक नवंबर में ट्रंप की अगली एशिया यात्रा के दौरान हो सकती है, जब विश्व नेता चीन के शेंजेन में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई योजना नहीं बनाई जा रही है, लेकिन किम के साथ एक और महत्वपूर्ण बैठक की राष्ट्रपति की इच्छा से पता चलता है कि ईरान पर जीत अब भी दूर है। ऐसे में ट्रंप विदेश नीति में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए उत्सुक है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2018 से 2019 तक किम से 3 बार मुलाकात की थी, लेकिन दोनों पक्ष उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर मतभेदों को दूर करने में विफल रहे। तब से उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम में काफी विकास हो चुका है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। टोक्यो के पूर्व में स्थित चिबा प्रीफेक्चर के अधिकारियों का कहना है कि पिछले सप्ताह हुई रिकॉर्ड तोड़ भारी वर्षा के बाद 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और एक व्यक्ति अब भी लापता है। अधिकारियों का कहना है कि 130 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 3 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। उनका कहना है कि 1206 मकानों के फर्श डूब गए हैं और 1489 मकानों की नींव में पानी भर गया है। अधिकारियों का कहना है कि बुधवार दोपहर 1 बजे तक नगर पालिकाओं द्वारा निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में 59 लोग रह रहे थे। शहर में बाढ़ के कारण सड़कों पर खराब हुए लगभग 2500 वाहनों को हटाने का काम चल रहा है। मंगलवार को इन वाहनों से निपटने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया। इसमें प्रीफेक्चर, चिबा शहर और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ साथ क्रेन से वाहन उठाने वाले लोग भी शामिल हैं। कार्यदल वाहनों के मालिकों की पहचान करके उनसे वाहन हटवाने का अनुरोध करेगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के खिलाफ अपना अभियान तेज कर रहा है। वो न्यायालय के नेतृत्व पर प्रतिबंध लगा रहा है, जिसमें अध्यक्षा अकाने तोमो को भी शामिल हैं। अकाने एक जापानी न्यायाधीश हैं जिन्होंने 2024 में पदभार संभाला था। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को विदेश मंत्री मार्को रूबियो का वक्तव्य जारी किया, जिसमें ICC को भ्रष्ट और राजनीति से बुरी तरह प्रभावित बताया गया। साथ ही अदालत पर अधिकार के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। प्रतिबंधों के तहत अमरीका में स्थित ICC की परिसंपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि वो तब तक कार्रवाई जारी रखेगा जब तक कि ICC अमरीकी संप्रभुता के लिए खतरा बना रहेगा। अमरीकी अधिकारियों ने अफगानिस्तान में अमरीकी सैनिकों द्वारा कथित युद्ध अपराधों की जांच को अदालत द्वारा मंजूरी दिए जाने पर आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने युद्ध अपराधों के कथित आरोप के तहत इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की निंदा की है। उन्होंने इन मामलों में शामिल न्यायाधीशों और अभियोक्ताओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। ICC ने प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए कहा है कि अदालत को निशाना बनाने से कानून का शासन कमजोर होगा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। उसने जोर देकर कहा कि वो स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखेगा। जापान सरकार ने मंगलवार को एक विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक आयोजित की, जिसमें विदेशी निवासियों को जापानी भाषा और दैनिक जीवन के नियम सिखाने में मदद करने के लिए एक नए कार्यक्रम पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसा माहौल तैयार करना है जिससे विदेशी निवासी जापानी समाज में आसानी से घुल मिल सकें। विदेशियों से संबंधित नीति के प्रभारी कैबिनेट कार्यालय के राज्य मंत्री सुजुकी हायातो ने कहा कि एक व्यवस्थित और समावेशी समाज की स्थापना के दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम की स्थापना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि उनका लक्ष्य एक प्रभावी योजना तैयार करने का है। ये योजना मुख्य रूप से मध्यम से दीर्घकालिक निवासियों पर लागू होगी। ऑनलाइन शिक्षण सुविधा जापान के बाहर भी उपलब्ध होगी। इस बैठक में कार्यक्रम की विषय वस्तु और लक्षित प्रतिभागियों के साथ साथ निवास दर्जे की जांच में परिणाम

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 25वें पाठ में अपनी तबीयत के बारे में बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो बैठक में आराम कर रही है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है।
0: तो आइए सुनते हैं 25वें पाठ की बातचीत।
2: तामेसान, काओइरो गा वारुई देसु यो। दोशितान देसु का?
3: नोदो गा इताई इन देसु।
2: ओया ओया, सोन्ना तोकी निवा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
3: काइटो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
4: तामेसान, देकिता यो। हाई, दोज़ो।
3: ओ दाइजी नी।
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: हारूजी में लगे सेंसर ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है और उनके गालों पर हल्की नीली रोशनी टिमटिमाने लगी। तो हारूजी ने ताम से पूछा,
2: तामेसान, काओइरो गा वारुई देसु यो।
1: ताम जी, चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है।
2: दोशितान देसु का?
1: क्या हुआ?
0: ताम ने खांसते हुए जवाब दिया,
3: नोदो गा इताई इन देसु,
1: गले में दर्द है।
0: तब हारूजी ने कहा,
2: ओया ओया।
1: ओ,
0: फिर हारूजी ने ताम को सलाह दी,
2: सोन्ना तोकी निवा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
1: ऐसे समय में अदरक और शहद वाला गर्म पानी अच्छा रहता है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
3: काइटो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
1: काइटो अभी बना रहा है।
0: फिर काइटो ताम के लिए अदरक और शहद वाला गर्म पानी लेकर आया।
4: तामसान, देखता यो।
0: ताम बन गया।
4: हाई, दोज़ो।
0: ये लो।
1: उसके बाद मिया ने ताम से कहा,
3: ओदाइजिनी,
1: अपना ध्यान रखो।
0: अदरक और शहद वाला गर्म पानी बनाने के लिए कद्दूकस किए हुए अदरक को शहद के साथ गर्म पानी में मिलाया जाता है। ये माना जाता है कि इसे पीने से गले के दर्द और खांसी से राहत मिलती है। इसे पीकर ताम को अच्छा लगेगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: नोदो गा इताई इन देसु,
1: यानी गले में दर्द है। ये वाक्य सीखकर आप तबीयत खराब होने पर अपनी परेशानी बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: नोदो
0: का अर्थ है गला। उसके बाद लगा है गा, जो उस अंग के नाम के बाद लगाया जाता है जिसमें दर्द हो, और
5: इताई इन देसु
0: का मतलब होता है दर्द है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि
5: इताई इन देसु
1: के अंत में लगे
5: देसु
1: का उपयोग अपनी बात समझाते समय किया जाता है। इसलिए किसी को अपनी तबीयत के बारे में बताते समय भी वाक्य के अंत में लगाते हैं
5: देसु। इताई इन देसु
0: में पहले आया है ई विशेषण,
5: इताई
0: यानी दर्द होना, और उसके बाद लगा है
5: देसु।
0: आज की बातचीत में ताम इस वाक्य की मदद से हारूजी को अपनी परेशानी समझा रही है।
1: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: इताई इन देसु, नोदो गा इताई इन देसु।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें कोई अपनी तबीयत के बारे में बता रहा है।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
0: पहले महिला ने कहा,
1: क्या हुआ?
0: कोई परेशान दिख रहा हो तो उसकी समस्या पूछने के लिए इस वाक्य का उपयोग करते हैं। ये पूरा वाक्य एक साथ याद कर लीजिए।
1: जवाब में

0: पुरुष ने कहा।
1: अतामा का इताइन देस,
2: सिर में दर्द है।
3: अतामा
0: का मतलब है सिर, इसलिए
3: अतामा का इताई
0: का मतलब हुआ सिर में दर्द है। पुरुष ने आगे कहा,
1: नेत्स गा आरुन देस,
2: बुखार है।
3: नेत्स
0: का अर्थ है बुखार और
3: आर
0: एक क्रिया है जिसका अर्थ है होना, तो
3: नेत्स गा आर
0: का मतलब है बुखार होना। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि
3: देस
0: विशेषणों के ही नहीं क्रियाओं के बाद भी लग सकता है।
2: तो अब ये बातचीत सुन लीजिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
3: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, तो ये बात जापानी भाषा में कैसे कहेंगे? पेट के लिए जापानी शब्द है
3: ओनाका,
0: और दर्द को जापानी भाषा में कहते हैं
3: इताई।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: ओनाका गा इताई देस, ओनाका गा इताई देस।
2: अब मान लीजिए कि बहुत देर तक किसी वाहन में बैठे बैठे आपको आपकी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत खराब लगना को जापानी में कहते हैं
3: किमोची गा वारुई।
2: तो अपनी बात जापानी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए।
1: किमोची गा वारुई देस, किमोची गा वारुई देस।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
3: ओदाइजिनी, ओदाइजिनी
2: का अर्थ है अपना ध्यान रखो। अगर कोई बीमार हो या किसी को कोई चोट लगी हो तो आप फिक्र दिखाने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आराम करके जल्दी ठीक हो जाए।
0: अब इस वाक्य को विभिन्न लोगों की आवाजों में सुनते हैं।
5: お大事に。お大事に。お大事に。
2: और अब एक बार फिर से सुन लेते हैं आज की बातचीत।
6: タメさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
7: 喉が痛いんです。
6: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
7: カイトが今作っています。
5: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
7: お大事に。
6: ハルさんの知恵袋。
0: अब बारी है हमारे अंश हारू जी की सलाह की, जिसमें आज हम बता रहे हैं कि अगर आप जापान में बीमार हो जाएं तो क्या कर सकते हैं।
2: जापान में बीमार होने पर क्या करना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी के लक्षण क्या हैं।
0: अगर लक्षण गंभीर ना हो तो आप किसी भी दवाखाने या फार्मेसी से दवाई ले सकते हैं। वहां दुकानदार को अपनी परेशानी बताने पर वो आपको सही दवाई दे देगा। तो दवाखाने जाइए और दुकानदार से कहिए, पेट में दर्द है या बुखार है। ऐसा करने पर आपको बिना पर्ची के दी जा सकने वाली दवा मिल जाएगी।
2: लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको किसी चिकित्सालय या अस्पताल जाना होगा। विदेशी पर्यटकों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूची जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन यानी JNTO की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आप फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO शब्द से सर्च कर सकते हैं। इसे बुकमार्क कर लीजिएगा।
0: इसके अलावा पास के अस्पताल या चिकित्सालय का पता लगाने के लिए आप पर्यटन केंद्र या होटल के रिसेप्शन पर भी पूछ सकते हैं, और आपात स्थिति में फोन पर 119 दबाकर एम्बुलेंस बुला सकते हैं।
2: लेकिन हम ये कामना करते हैं कि जापान में यात्रा करते समय आपको कभी भी इन सुविधाओं की जरूरत ना पड़े।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
2: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ साकुरा यानी चेरी के फूल देखने जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। टोक्यो के मशरक में वाके चिबा प्रिफेक्चर में हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते रिकॉर्ड शदीद बारिश के बाद 13 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। उनका कहना है कि एक शख्स लापता है। हुकाम के मुताबिक 130 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 3 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। उनका कहना है कि ज़ेरे आब आने वाले घरों में से 1489 घरों में पानी फर्श की सतह से नीचे रहा, जबकि 1206 में फर्श की सतह से ऊपर आ गया। हुकाम का कहना है कि बुध की दोपहर 1 बजे तक 59 अफराद बल्दियात की जानिब से नामजद करदा इनखलाई मराकज़ में मुकीम थे। ज़ेरे आब आने के बाद शहर की सड़कों पर छोड़ी गई तकरीबन 2500 गाड़ियों को मुंतकिल करने का काम जारी है। छोड़ी गई गाड़ियों से निपटने के लिए मंगल को एक प्रोजेक्ट टीम तश्कील दी गई। इसमें प्रिफेक्चर, चिबा शहर और मरकजी हुकूमत के साथ साथ गाड़ियां खींचने वाले ट्रकों की सनद के नुमाइंदे भी शामिल हैं। ये टीम गाड़ियों के मालिकान की शनाख्त करेगी और इन्हें ले जाने की दरख्वास्त करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया बैनुल अक्वामी फौजदारी अदालत ICC के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज कर रही है। इसकी जानिब से सदर मोहतरमा अकाने तोमोको समेत अदालत की क़यादत पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। अकाने एक जापानी जज हैं जिन्होंने 2024 में ओहदा संभाला था। अमरीकी वजारत खारजा ने मंगल के रोज़ वजीर खारजा मार्को रूबियो का एक बयान जारी किया। इसमें ICC को बदउनवान और तबाहकुन हद तक सियासतज़दा करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया गया है कि अदालत अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है। इन पाबंदियों में अमरीका में मौजूद किसी भी असासे को मुंजमद करने पर जोर दिया गया है। वजारत खारजा ने यह भी कहा कि वो उस वक्त तक मजीद कार्रवाई करने के लिए तैयार है जब तक कि ICC अमरीकी खुदमुख्तारी को मजीद ख़तरे में ना डाल सके। अमरीकी हुकाम ने अदालत की जानिब से अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों के मुबैना जंगी जराइम की तहकीकात की मंजूरी पर एतराज़ किया है। उन्होंने मुबैना जंगी जराइम पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जारी किए गए वारंट गिरफ्तारी की मजम्मत भी की है। हुकाम ने इन मुकदमात में मुलविस जजों और इस्तगासा पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। ICC की जानिब से पाबंदियों पर तनकीद की गई है। इसने कहा है कि अदालत को निशाना बनाने से कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचेगा और बैनुल अक्वामी कानूनी नज्म खतरे में पड़ जाएगा। अदालत का इसरार है कि वो आज़ादाना तौर पर काम करती रहेगी। गैर मुल्की बाशिंदों को जापानी ज़ुबान और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उसूलों ज़वाबित सीखने में मदद फराहम करने के एक नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए जापानी हुकूमत ने मंगल के रोज़ माहरीन के एक पैनल का पहला इजलास मुनक़िद किया है। इस प्रोग्राम का मकसद ऐसा माहौल पैदा करना है कि जिसमें लोग हमवार तरीके से जापानी मुआशरे के साथ मुताबिकत पैदा कर सकें। काबीना दफ्तर में गैर मुल्कियों के बारे में पॉलिसी के इंचार्ज वजीर ममलिकत सुजुकी हयातो ने कहा कि समाजी शमूलियत पर मबनी मुनज़्ज़म और जामे मुआशरे के क़याम के तनाजुर में इस प्रोग्राम का क़याम एक अहम मामला है। उन्होंने मजीद कहा कि उनका हदफ एक मुअस्सर मंसूबा तरतीब देना है। ये प्रोग्राम अमूमी तौर पर दरमियानी से तवील मुद्दती रिहायशियों का अहाता करेगा। ऑनलाइन सीखने का माहौल जापान से बाहर भी दस्तयाब होगा। प्रोग्राम के मवाद और मतलूबा शुरका के साथ साथ रिहायशी हैसियत की जांच पड़ताल में नतायज की अक्कासी करने का तरीक़ाकार भी इजलास के मौजूआत में शामिल था। पैनल ने तस्दीक की कि इस प्रोग्राम को माली साल 2028 में शुरू करने के मकसद से बातचीत जारी रखी जाएगी।
1: इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए NHK.JP/Urdu।

0: 熱があるんです。
1: अब इस मकाल में की तशरीह।
2: दोस्तान दिस्का?
3: क्या हुआ?
1: ये जुमला किसी से उसकी तबीयत की खराबी के मुतालिक पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दो के मानी है कैसा या क्या। ये बहुत मुफीद जुमला है, इसे याद कर लेना बेहतर होगा।
0: अतामा का इताइन दिस,
3: सर में दर्द है।
1: अतामा के मानी है सर, चुनांचे अतामा का इताई का मतलब हुआ सर में दर्द।
0: नेत्स का आरुन दिस,
3: मुझे बुखार है।
1: नेत्स के मानी है हरारत या बुखार। आरु एक फेल है जिसका मतलब है होना, चुनांचे नेत्सुगा आरु का मतलब हुआ बुखार होना। इस जुमले से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें सिफत की तरह फेल के बाद भी नदेस लगाया जा सकता है।
3: अब मकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए।
4: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: अब सेहत के कुछ और मसाइल के साथ मशक करें। मसलन आपके पेट में दर्द है तो ये बात किस तरह कहेंगे? पेट की जापानी है
4: ओनाका, ओनाका।
1: और दर्द को कहते हैं
4: इताई, इताई।
1: तो सामीन कोशिश करें।
2: ओनाका गा इताई देस, ओनाका गा इताई देस।
1: और अगर आपको मतली की कैफियत महसूस हो रही हो तो कैसे कहेंगे? चक्कर या मतली जैसी कैफियत को कहते हैं
4: किमोची गा वारुई, किमोची गा वारुई,
0: किमोची गा वारुई देस, किमोची गा वारुई देस।
3: अब आप तबीयत खराब होने की सूरत में दूसरों को आसानी से बता सकेंगे।
1: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का लफ्ज मकालमे में मियाँ ने इस्तेमाल किया है, इसे याद कर लें। ओदाई जीनी यानी अपना ख्याल रखें। ये किसी मरीज या जख्मी शख्स से कहा जाता है। ये एक तरह से मरीज के जल्द ठीक होने की तवक्को का इजहार है।
3: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
5: ओदाई जीनी,
6: ओदाई जीनी,
7: ओदाई जीनी।
3: सामीन अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
4: お大事に。
1: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपनी तबीयत की खराबी के बारे में बताती है।
8: तामसान, खाओ इरो गा वारुई देसु यो। दो शितान देसु का?
9: नोदो गा इताइन देसु।
8: ओया ओया, सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा ई देसु यो।
9: カイトが今作っています。
10: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
9: お大事に。
8: ハルさんの知恵袋。
3: अब हारू सान की जंबील का कॉर्नर। आज हम आपको बता रहे हैं कि जापान में बीमार हो जाएं तो क्या करना चाहिए।
1: हिरा, आपकी तबीयत खराब हो तो आप क्या करती हैं?
3: इसका ताल्लुक बीमारी से है। मामूली मसले की सूरत में मेडिकल स्टोर से दवा ले लेती हूँ।
1: वाकई बीमारी के अलामत मामूली हों तो मेडिकल स्टोर से दवा लेना आसान है। स्टोर के माहिर अद्वियात को पेट में दर्द या बुखार वगैरह बीमारी की अलामत बताकर डॉक्टरी नुस्खे के बगैर दवा ली जा सकती है।
3: लेकिन अगर डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो तो क्या किया जाए?
1: ऐसी सूरत में मुतल्लिका शोबे मसलन जनरल फिजिशियन या आँख या कान वगैरह के शोबे के हामिल क्लिनिक या अस्पताल जाना चाहिए। मुआयने के बाद डॉक्टर दवाएँ तजवीज़ करेगा। डॉक्टरी नुस्खा दिखाकर मेडिकल स्टोर से दवा लें। हुकूमत जापान के शोबे सियाहत JNTO की वेबसाइट पर उन तिब्बी इदारों की फहरिस्त मौजूद है जहाँ गैर मुल्की सयाहों के मुआयने की सहूलत मौजूद है। साइट तलाश करने के लिए फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO से सर्च करें। इस वेबसाइट को महफूज कर लेना बेहतर होगा। इसके अलावा सियाहती मराकज़ या होटल के इस्तकबालिया काउंटर से भी करीबी हस्पताल के बारे में मालूमात ली जा सकती है। और किसी हंगामी सूरत हाल में 119 पर फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई जा सकती है।
3: 119, मैं ये नंबर याद रखूंगी।
1: खुदा करे कि कभी ये नंबर इस्तेमाल करने की नौबत ना आए, लेकिन बहरहाल इसे याद रखना मुफीद होगा।